जन्म कसम क्यों खाई। ओ अच्छा है मिलके रहना, फूलों सा खिलके रहना, फिर क्यों ना।

0: यार दीदी, यावेळेस मला तुझ्या वहिनीला खूप स्पेशल गिफ्ट द्यायचंय.
1: अरे मग दे ना, एवढा का विचार करतोयस?
0: पण काय द्यायचं तेच समजत नाहीये ना.
1: अरे रेडिओ विश्वास आहे ना,
0: म्हणजे
1: आता बर्थडे असो किंवा अनिव्हर्सरी, आपल्या प्रियजनांना आपण रेडिओ विश्वास वरन शुभेच्छा देऊ शकतो.
0: ते कसं काय?
1: फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण या शुभेच्छा देऊ शकतो. तर लगेचच कॉल कर 8380165 किंवा 8380165 या नंबरवर.
0: हो लगेचच कॉल करतो.
2: छोटे छोटे सपने हमार, छोटी आशा छोटा प्यार.
3: ए क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल.
4: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा.
3: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हराम कर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए. बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर. एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हंसूंगा. उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है. मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे ने, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 3 बरस की किस्मत का. देखा हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे.
5: सोता है बहुत जागा है ना.
3: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेशी बाबू बही अतिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।

एक नजर ने तेरी मार दिया, एक अदा ने तेरी लूट लिया, किस खता का बदला लिया ये बता न सता।

फिर मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

है अगर हम तो तुम्हें गम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द जवां मर्द है हम दर्द तेरा।

लूटेंगे हम ही सोना, पाएंगे हम ही सोना, लूटेंगे हम ही चांदी, एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी, मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे।